तेरे लिए केड़ी बड़ी गल है। तू चाहे ते पत्थरां नू पानी ते तार दे, तेरे लिए केड़ी बड़ी गल है। ए मालक बख्शिश करो सानू गुनाहां दे परिया नू तार दे। शाम दा वक्त है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है। कबीर जी ते कबीर जी दे घरों लोहे जी दोनों जाने नदी दे किनारे ते खलोते ने। नदी पार करके अपने घर जाना है।

एक सहितारी प्रेमी तख्त पोछते बैठे, हाथ विच माला फड़ी रह राज दा पाठ पिया करदे। इस दा लड़का बाहरों भटकदा भटकदा आया, अपने पिता नूं पाठ करदा देखिया तां कोल बैठ गया। पिता ने पाठ कीता, पुत्र ने सुनिया, अरदास कीती, पुत्र ने वो भी सुनी। अरदास तो बाद ए लड़का पुछदा है, पिता जी ए जो तुसी पढ़ रहे से मैनू सुन के बड़ा आनंद आया, पर ए किस दी कलाम तुसी पढ़दे सी? इस तरह लगदा है जिवें पहला कदी इस लड़के ने पाठ नहीं सुने। वैष्णव साधुआं दे कोल

के सुन के लड़का कहन लगा, पिता जी मैं ते एवें बाहर भटकदा रहा, मन नू शांति नहीं मिली, अज ये बाणी सुनी मन टिक गया। जिस गुरु दी बाणी विच इन्ना आनंद है, जे कदी सुगुरु दे दर्शन हो जान ता पता नहीं किन्ना क आनंद प्राप्त होवेगा। पिता जी ओ गुरु किथे? मेरा चित करदा है कि मैं उस गुरु दे दर्शन करा। पिता खुश होया कि मेरे पुत्र दा ध्यान गुरु

गुरु दा जा सरवण कर दे ए सारे लोग आनंदपुर साहब नु तुरे जा रहे ने। ए सहजधारी लड़का मन विच सोचता जांदा है मना जिस गुरु दी बाणी विच इन्ना आनंद है उस गुरु दे ते दर्शन कीते आ मन नु ठंड पै जाएगी। गुरु साहब ते चौंकड़ा मार के बैठे होंगे उन्ना दियां अखां बंद होंगियां गुरु साहब दी समाधि लगी होवेगी। मैं जाके बुलावांगा तावी उन्ना दी समाधि नहीं खुलनी उन्ना दा दरबार बड़ा वड्डा होवेगा बड़ी संगत बैठी होवेगी बड़ी सोभा होवेगी क्योंकि वैष्णव साधुओं की संगत करया करदा सी जिहड़े समाधियां ला के बहिंदे बड़ी संगत बैठी होवेगी बड़ी सोभा होवेगी क्योंकि वैष्णव साधुओं की संगत करया करदा सी जिहड़े समाधियां ला के बहिंदे और उसे तरह ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे सोचदा संगत दे नाल तुरिया जाए।

सूरज डूबरे है ए सारा संग आनंदपुर साहब किले दे बाहर पहुंचे है। दूसरे पासे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शिकार खेड़ के आए सन। नाल सिखा ने किन्ने ही मग मार मार के उन्हां दीआं लत्तां फड़ियां ने ते धौणा लटकियां ने। ओ मग हत्थां विच फड़े होए ने। संगत ने गुरु साहब नूं देखिया, गुरु साहब ने संगत नूं, गुरु साहब जी भी खड़े हो गए, संगत भी किले दे बाहर ही खड़ी हो गई। सारी संगत ने मत्था टेकिया, पर ए जिहड़ा सहज तारी प्रेमी सी एदे मन विच गुरु साहिबां वास्ते किरणा पैदा हो गई। ए तां सोच के आया सी कि गुरु दी समाधि लगी होवेगी, गुरु साहिब चौंकड़ी मार के बैठे होणगे, पर जदू देखिया कि गुरु साहिब जी तां शिकार खेड़ के आए ने, नाल सिखां ने मरे होए मग फड़े ने हत्थां दे विच, ताए दा मन किरणा दे नाल भर गया। भाई संतोख सिंह

0: दोष हजारों मगो लंघाए।
1: जिन्हां दे सिखां ने कोस हजारों बहुत सारे मग मार के ते पुठे लटकाए।

सारी संगत वाल देखे है। सारी संगत वाल देखन तो बाद ए जड़ा लड़का सी सहजधारी इस उत्ते निगाह टिका दी। इसने भी देखिया कि गुरु साहब जी मेरे वाल देख रहे, समझ गया कि मेरे मन की भावना गुरु साहबा ने जान ली। जो मैं मन विच सोच रहा कि गुरु के मन विच दया नहीं, ये जीवां नूं मारदे ने, गुरु साहबा ने जान लिया।

उस कर्मा दी खेड दा सदका ही जीव जेड़े ने जुड़ना विच भटकदे ने ते गुरु कृपा करके उन्हां दा जन्म मरण दा गेड जिहड़ा है ओ कट देंदा। सारी संगत किले विच दाखल होई, साहब जी भी जा पहुंचे, शाम दा दीवान सजिया, लंगर छकिया, इहदे नाल दे साथी तां सौ गए पर इहनूं नींदर नहीं आ रही। कहन लगा मना गुरु दा तेज प्रताप भी बड़ा, गुरु दा दरबार भी सोहना है, संगत भी बड़ी है, दर्शन कीते आ, मन नूं ठंड पैंदी, पर इको गल माड़ी है जेड़ा गुरु जीवां नूं मारदा। हुण सोचण लगा गुरु नूं 600 रुपया भेटा धरां कि ना धरां। ऐसे सोच विचार विच अमृत वेला हो गया, संगत उठी, ए भी उठे, इशनान पानी कीता, गुरु साहिबां दे दरबार वाल संगत दे नाल तुर पे। अमृत वेले दा नजारा, कोई झाड़ू पिया फिरदा, कोई पानी तरौंकदा, कोई लंगर विच सेवा कर रहे है, कोई बाणी पढ़दा, कुछ कीर्तन सुनन जा रहे ने, मन बड़ा खुश होया। ए भी जा बैठा संगत विच, आसा दीवार दा कीर्तन होया, गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश होया, कलगीधर पातशाह भी आए। आखीर दे विच रागी सिंघा ने शब्द पढ़िया, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हालत पलत मुख उजल हो।

झाड़ू फेरिया लंगर विच भांडे मांजे गुरु दिया कथा कहानिया सिखा कुल सुनिया मन भिज गया। एक दिन कलगीधर पातशाह इकले बैठे सन। एक सहजधारी लड़का गुरु साहबां दे कोल गया। 100 रुपया पिता वाला 500 रुपया अपने कोलों गुरु साहबां दे चरणा ते रख के मथा टेकिया। नाले किया पातशाह ए हथां दी मैल है इस नूं सफली करो कुछ बख्शिश करो छुट्टियां देओ ताके वापस घर जावां। गुरु साहब जी बड़े प्रसन्न होए कड़ा प्रसाद दिता आख्या ए साडे वल्लों अपने पिता नूं देई एक सर्वलोह दा कड़ा ते एक अपना वचन दिता सिखा इस कड़े दा अदब रखी जो मंगेगा वो तेनू मिलेगा। ए बख्शिशा लै के खुशी खुशी आनंदपुर साहब तू तुर पिया। बड़ा प्रसन्न है बड़ा खुश है पर जदों आनंदपुर साहब तू बाहर निकलिया ते सारा आनंद गुआच गया। माया वाली बिरती फिर जाग पई कह लगा मना बहुत माड़ा कीता 600 रुपया रोड़ के आ गई एकड़ा प्रसाद दिता है जिड़ा पिता घर रोज बनांदा ए सर्वलोह दा कड़ा दिता नाले वचन दिता कहंदे ने जो मंगेगा तेनू मिलेगा पर जिस कड़े दी अपनी कीमत 4 आने नहीं इन्हें मैनू 1000 रुपए कित्थों दे देने। बड़ा उदास हो गया मुंह लटकाए ते तुरदा तुरदा चमकौर साहब

बाजार विचों लंघ रहे है पर बड़ा उदास। एक गुरु का सिख ध्यान सिंह माजरी है बाजार विच खलोता सी, इसन बाहों फड़ के घर लै गए है, जल पानी नाल सेवा की थी। ध्यान सिंह कहन लगा, भाई लगदा आया गुरु की नगरी तो पर उदास बड़े। गुरु दे घरों जिहड़ा भी आंदा है उहदा चेहरा खिड़िया हुंदा है, पर तू उदास है की गल? कहन लगा, सिखा की दसा, उजैन तू गया, तीन महीने सेवा की थी, 600 रुपया रख के गुरु नूं मत्था टेकिया, टेके आ कुछ बख्शिश करो, एकड़ा दिता है जेड़ा मेरा पिता घर रोज बनांदा, एक लोहे दा कड़ा ते बचन दिता है, कहंदे सी जो मंगेगा मिलेगा, पर सिखा तू दस, जिस कड़े दी कीमत अपनी चार आने नहीं उन्हें मैनू की देना? ये गल सुन के ध्यान सिंह उथों उठे, घरवाली को आ गए। ध्यान सिंह घरवाली नूं कहन लगा, भलीए लोके, एक मूर्ख सिख आया, उन्हों की पता कि गुरु का वचन की हुंदा है? जे तू मेरे नाल सहमत होवें, माया का लालची 600 ते 5 रुपये वध दे के गुरु का वचन ते कड़ा असी उहदे कोल लै ली। घरवाली ने कहा, स्वामी जी बाजार जाइए, 1 रुपए की 1 मण कणक आंदी, उस कणक नूं घर लिया के साफ करन लगे हां, 1 दाणा चुकीए दूसरे पासे रखिए ते आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु, फिर 1 दाणा चुकीए फिर आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु, 1 मण कणक विच जिन्ने दाणे ने सारिया ते वाहिगुरु वाहिगुरु कह के ओ कणक साफ करिए, उस कणक नू फिर बाजार लै जाइए वेचण वास्ते, तां बाणिए ने ओदा मुल 1 रुपया ही पाणा, पर जे ओ कणक जिदे ते सिमरन करके साफ कीती गई है ओ कणक गुरु घर लै जाइए ते गुरु नानक तुठ के अपने सेवक नू अपनी जगह दे देंदा है, इन्ना गुरु दयाल हो जांदा है। गहने ला दिते, गहने वेच के इन्नू पैसे दियो, इन्नू की पता के गुरु का वचन की हुंदा है? 605 रुपया जेब च पा के ध्यान सिंह माजरिया फिर उस लड़के दे कोल आ

खातिर आया पिता को। पिता जी मैनू गुरुकुल बख्शवा दियो। पिता इन्हां दी माता ते ए लड़का चमकौर सौ पहुंची। ध्यान सिंह नू नाल लैके के तू गुरुकुल सानू बख्शवा दे आनंदपुर साहब जा पहुंचे। तीन दिन सेवा कीती, चौथे दिन इस लड़के दा पिता गुरु साहिबां दे कोल पहुंचे है। बेनती कीती कि खिमा करो, मेरा लड़का भुल गया, उन्हें आप दा बचन वेचिया। साहब जी कहन लगे, बिशंबरदास घबरा ना, तेरा ते साडा बड़ा पुराना संबंध है। गुरु नानक साहब उजैन गए सन ता तुहाडे वड़के नानू ने कहा सी फिर कदू दर्शन दियोगे, ता गुरु नानक साहब ने कहा सी दसवें जामे विच मिलांगे। तो दसवें जामे विच असी आए हां, तुहाडा साडा मेल होना सी होया है, कल दीवान तो बाद आयो, जो मंगोगे तुहानू मिलेगा। अगले दिन सारे जने इकट्ठे हुए, साहब जी कहन लगे

बच्चे दा जन्म होण वाला है ते ओदी खुराक आ जानी कौन है। जिन्ना कोनू दुध ठंडा लोड़े, जिन्ना को गर्म लोड़े, उस रूप विच खुराक आउणी ए कौन है अंदर ओनू खोज, उस कुदरत नू खोज। ये भी वेखो तुसी भी घ्यो ना होवे, दुध ना होवे, गुजारा हो सकदा है, ते ए चीजां रब ने थोड़ियां दित्तियां, महंगी है। पानी बिना गुजारा नहीं ते खुला बख्शिया हक सतनाम, हवा बिना ही गुजारा नहीं ते बिल्कुल मुफ्त बख्शी। हर चीज तोल के सुट्टी धरती ते उन्हें।

अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज।

संसार अमृत दी एक बगीची है जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओह गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु

ए अमृत की बाड़ी है रे, तिन हर पूरे करिया। ऐ पाई इस संसार अमृत की बगीची है, अमृत का बाग है, और इस बाग नू परमेश्वर बनाने वाला है। इस गल नू ओ समझदा है जिदे अंदर राम दा परमेश्वर दे नाम दा प्रकाश हो जाए, ते जिदे अंदर राम नाम दा प्रकाश हो जाए

वचार दिए। जद परमेश्वर दा नाम अंदर वस जावेगा, परमेश्वर दे नाम दा ढोल वजेगा, ते फिर जिहड़े विकार ने ए अंदरों भज जाणगे। ढोल वजे ता छोटे मोटे खड़ाक सुनाई नहीं देंदे, परमेश्वर दे नाम दा ढोल अंदर वजेगा ते विकार दुबदा ईरखा ए भज जाएगी। बिन सावन कन हर गाजे परमेश्वर दा नाम वसेगा ते अंदर बरसात होवेगी, केड़ी नाम दी बरसात। बादल बिन बरखा होई नाम दी बरसात वास्ते बदलां दी लोड़ नहीं पैंदी। जो तत बिचारे कोई, भगत नामदेव जी कह रहे ने, अगर इस दी विचार

कि जिन्हां ने अपने गुरु दे नाल प्रीत लाई, गुरु ने नाम दे के परमेश्वर नाल मिला दिता, ओ फिर परमेश्वर दा रूप हो गया। उसने इस कहानी नूं जान लिया कि संसार परमेश्वर दा रूप है, ते जिन्हां ने इस गल नूं जाणिया ओ फिर परमेश्वर

सफल जन्म मोको गुरु कीना। गुरु ने मेरा जन्म सफल कर देता, दुख विसार सुख अंतर लीना। गुरु मिलिया दुख दूर भज गए ते मेरे अंदर सुखां दा निवास हो गया, क्योंकि सुख देने वाला नाम मेरे अंदर वस गया।

कृपा की थी ज्ञान अंजन अंजन कैमरे में सुरमा गुरु ने ज्ञान का ऐसा सुरमा दिता कि मैनु इस गल की सोझी हो गई राम नाम तो बगैर जीवन

मन की हर तृष्णा खत्म होगी, क्योंकि नाम जिहड़ा है यह सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन में पैदा होती है। हर इंसान भज रहा है, जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन काटे। सुख बहुती माया विच भी

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाने ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश

कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तावी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान ने। कई बार आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे होंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा होंदा है गुस्से दे नाल, उहदे मन नूं चैन नहीं होंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच होंदा है, अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान यह है कि दूसरे का हक मैं खावां, अपनी सुख वास्ते दूसरे का हक खाना, दूसरे नूं दुख देना, यह है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान यह है कि भाई सारे विच परमेश्वर है, सारे विच खुदा है, वाहिगुरु है, जे सारे विच ओ है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोझी

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन दे। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। पावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आपा कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा हुंदा भी अक्सर देखते हैं, देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधर और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चाह, बहुत घट हुंदे हन सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं हुंदी, सेवा ते मन हुंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पए। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहण वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिर

0: अच्छा हो ऐसी
1: मैंने अच्छे का विचार मार पुवरता ऐसी
0: तन कर मत की मन माहे।

कार हो गई, वो सिट देन दे योग हो गई। हुजूर बाबा जी आखते हैं, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, एक ही कारण है कि तू अपनी रूट्स दे नालों टुट गया है, कट ऑफ हो गया है, डिस्कनेक्टेड हो गया है, और किसी भी दरख्त नूं उस दियां रूट्स दे नालों तुसीं अलग कर दियो, वो पहला आहिस्ता आहिस्ता सुक जाएगा, फिर वो गल जाएगा। महाराज जी बाणी च आखते हैं।

लानत है, त्रिकार है। उन जो शख्स बहुत प्रेम नाल गुरु बाबे ते उत्ते बहुत श्रद्धा दे नाल पूर्ण विश्वास रख के सुनेगा वो शर्मसार हो जाएगा, उस दियां अखां च अथरू भी आ जाएंगे, उसका दिल भी फुट फुट के रोएगा, उसनू अपने आप तो गिलानी आएगी, उसनू अपने आप तो लज्जा आएगी, शर्म आएगी कि गुरु बाबा जी आखदे हन कि तेरे गुण गल गए हन, इस करके तेरे जीवन दे त्रिकार है। नंबर एक नुक्ता कहते हैं अते तेरा खाना उसदे भी त्रिकार, तेरा पीना उसदे भी त्रिकार, तेरा सोना पहनना सब कुछ, तेरे सब कुछ नु त्रिकार है, क्योंकि तेरा तू अपने आप नु गाल लिया है, तू गलिया पे तू किसे कम दा नहीं।

अगर इसने मंदिर नहीं बनाया तो जदों इस दे विचों रूह निकल जाएगी कहिंदे यही दुर्लभ डरौनी लगेगी, इसके नजदीक खड़ना मुश्किल हो जाएगा, खड़द्या डर लगेगा, यह डरौनी बन जाएगी। फिर आखदे हैं

अगर इस कायां दे अंदर ए पोटेंशियल है कि ए कायां नू बनाउण वाले नू ए बुझ सकती है, रियलाइज कर सकती है, उस दे विच इमर्ज कर सकती है, उसनू समझ सकती है, तो कहिंदे अगर उसनू नहीं ए समझदी ते ए पशु तो प्रेत तो मुक्त तो भी बुरी है, प्रेत तो भी बुरी है, पशु तो भी बुरी है। चौथा नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन एक काया कमली है, मूर्ख है। कहिंदे हन

0: फिर आखते हैं ये मूर्ख है,
1: आसा बंदी मूर्ख दे
0: आसा बंदी आशामा बनी फिरती है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है। इस मूर्ख ने यह भी नहीं पता कि हो सकता कल दा दिन तेरा अखीरला दिन होवे, कल दी रात तेरी आखिरी रात होवे, अखीरला श्वास तेरा नेक्स्ट ही होवे, हो सकता आ साल तेरा अखीरला साल होवे, पर ए आशामा बंदी है बड़िया लंबिया लंबिया। कई बंदे कितनी उन्हां दी उम्र हो जाएगी फिर भी आखणगे हाले असी जदों सैटल हो गए तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सैटल पता नहीं कदों होणगे हो, तो कई लोग सारी उम्र सैटल ही नहीं होंगे, देन दे फाइनली सैटल इन द ग्रेव, फिर वो सैटल हो जाए। गुरु महाराज जी आखते हैं ये मूर्ख है क्योंकि इसने अपनी गलत आदतां बना लिया हैं, एडिक्शंस बना लिया हैं, स्वभाव बना लिए हैं, अते उना चीजां नू वरतदी है जड़ियां चीजां इसनू कमजोर कर दिया हैं। तो कहंदे ए मूर्ख भी है।

अगली गल पंजवन गुरु बाबा जी आखते हैं अगर एक आया मंदिर ना बनी सरोवर ना बनी तो यह फिर दुखां दा घर है या तो यह रब दा घर है नहीं तो फिर यह दुखां दा घर है क्योंकि इस दे विच इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं जो जो कमजोरी आंदी है बुढ़ेपा आंदा है इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं कि इंसान फिर उन्हां दियां दर्दां दे नाल घुलदा घुलदा इस दुनिया दे विचों जांदा है। सब तो ज्यादा पेन जो है इंसान नूं फिर एक काया दी सर्जरी हुंदियां हैं की कुछ हुंदा है कहिंदे हन इह शरीर ही फिर साडा एनिमी बनदा है। बड़ी कमाल दी गल महाराज ने बाणी च लिखी है कि इह शरीर ही अगर नाम नहीं जपया फिर साडा एनिमी बनदा है साडा विरोधी बनदा है। बाणी च आखदे हन इस तरह कहिंदे हन

जितने रस शरीर के तेते लगे दुख उतने ही ज्यादा दुख लगे, उतने ही ज्यादा मुश्किल दे विच पै। तो पंजवा नुक्ता यह है कि अगर यह सरोवर ना बनिया, अगर इसनू असी दुर्लभ ना बनाया, अगर इसनू रब दी सजाई हुई दुल्हन ना बनाया, तो इसने तुहानू दुखी भी बहुत करना, बहुत दुखी करना है। और उस दुख दे विच कोई साथ नहीं दे सकता, उसनू कोई शेयर नहीं कर सकता, वो दुख तुहानू खुद अपने आप चलना पैना। ये दुख दा घर है। अगला नुक्ता छेवां, गुरु महाराज जी इत्थे छेवें नुक्ते दे विच ते बहुत ही चोट वाली गल करदे हन। कहिंदे हन ए वेस्ट गया है, निष्फल गया है, व्यर्थ गया है। अते आखदे हन पंक्ति दे

सगल शरीर आवत संपकान, बाकी सारे ही शरीर जड़े हैं वह मरण तो बाद काम आते हैं। किसी की स्किन काम आती है, किसी दी बोन्स काम आदि हैं, कईयां दी दवाइयां बनदियां हैं, कईयां दी स्किन साढ़े उत्ते पहनने दे योग हुंदी है, असी पहन लैने हाँ। लेकिन इंसान दी स्किन उतार के पहन के देखो, मरे हुए इंसान दी स्किन नू उतार के पहन के देखो, पहनी जा सकती है। कहिंदे सगल शरीर आवत सब काम, सारे शरीर किसी ना किसी काम आ जांदे हन मरण तो बाद। ईवन सप वर्गा जहरीला जानवर भी उसकी स्किन भी काम आती, लेकिन इंसान का शरीर ऐसा है जो किसी काम नहीं आता। निफल मानुख, ये मानुख का शरीर जो बिल्कुल निष्फल जाता है, बस एक ही काम इसने करना सी, नाम जपन का। अगर ओने किया तो कहते निफल मानुख जपे नहीं नाम, ये बिल्कुल निष्फल हो गया। तो इसके सारे गुण जो हैं वो गल गए। एक दफा इस पंक्ति में सुनो, नाले अपने अपने अंदर इसनु रिफ्लैक्ट करो, अते सोचो कि ये सच है, ये सही है, कि मैं इसके नाल सहमत हाँ, कि मेरी जिंदगी ही ते नहीं अजही, कि मेरी ही जिंदगी अजही ते नहीं। ए जो शब्द वर्त्या है, त्रिक त्रिक खाया, त्रिक त्रिक सोया, त्रिक त्रिक कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिक शरीर कुटुंब सहत से, किते मेरा खाना पीना ही उसके त्रिकता नहीं है, त्रिकारता नहीं है, किते मैं अपनी इस मंदिर वर्गी काया नू ऐसे तो नहीं पचा बैठा हूं, तो फिर मैं किस तरह सिर उच्चा उठा के चलांगा, किस तरह अपने आप नू इंसान समझांगा, किस तरह मैं दूसरों के वल उंगली उठाव।

तू मंदिर सी, तू रब दी सुहागण सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं, सुनो किमें गले हैं। कहते हैं

इस सन्यासी पिता मेहता का लून ऐ बालके त्वाड़ा भी दूसरा जन्म होवेगा। हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच ग्रिस्ती होवोगे, फिर त्वाड़े कार ओ नारायण आप प्रगट होवेगा। पर जदू तक स्वास हन भगती करो, सिमरन करो। इस सन्यासी पिता मेहता कालू जी सन्यासी दे रूप विच इना दी जद मौत हुई ता जाग खुल गई। पिता मेहता कालू बड़े हैरान हुए, कहन लगे मैं ते अपने घर बैठा रोटी खांदा खांदा मैं सौं गया, एक एहो जिहा सुपना है। ए ते मेरा घर है, ना कोई नदी है, ना कोई सन्यासी, ना कोई सिख्या दाता, ना कोई दिव मूर्ति। पर हाली मन विच सुपने दा रस है, अखां विच भी सुपने दा रस है, ते अपने आप नाल गल्लां करदे हन ऐ मना कि ये नानक मेरे तप दा फल है, कि मैं पिछले जन्म विच सन्यासी सी, जो मैं ए पारी तप कीते उस तप दा फल, मेरी अरदास दा फल, जो गुरु नानक मेरे घर प्रगट होया, उठ के खड़े होए, अपने आप नूं कहंदे ने चल मना तेरे घर नारायण प्रगट होया है, चल के नमस्कार कर। मेहता कालू जी उठे, तन गुरु नानक साहब दे कमरे वल चल पे, ते की देखते तन गुरु नानक साहब बचपन की उम्र कमरे विच दीवा नहीं बलदा, पर प्रकाश है, मंजे ते सतगुर लत्था लमका के बैठे हैं, चेहरे का नूर चलिया नहीं जाता, इंज जापदा है जिवें सारा कमरा आत्मक रूहां वाले महापुरुषां दे नाल भरे है। मंगला चरण दे गीत

पुत्र ना समझो, आप नारायण है। जद इना बचन होया तां मैं तां कालू जी अपने माता पिता नूं कहिंदे ने।

एकदम उठ के खड़े हो गए और धन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दियां बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नू गल दे नाल लगाया ते नाल ए कहा, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते मत्था टेके, ए तां हो सकदा है।

वो माता पिता नु दुख दे, वो माता पिता नु ठोकरा मारे, ते बच्चियां दा फर्ज। जन्म देने वाले माता पिता दाते हैं, दाते दा शुक्र किया जाता है, दाते दी सेवा की जाती है।

अपने घर विच वड्यां दा आदर मान करना, पर देखदे आं एक मां बाप अठ धीआं पुत्रां नूं पाल सकदा है, पर जद उही माता पिता बुढ़े हो जाण ते ओ जिहड़े अठ धीआं पुत्र ने ओ एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले ते जद बच्चे वड्डे हो जाते ने ओ फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धीआं पुत्रां ते हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जद बुढ़े माता पिता कुछ मंगण ते फिर नूं पुत्र गुए कहिंदे ने पिता जी हाथ तंग है। कैसा

प्यारा लिखा है, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है, बाहे जना की पकड़ी है, सिर की जय बाहे ना छोटी है। असि जकारा बुलावे, तुम सारे ने उच्ची वाह करनी है, सच्चे पातशाह साड़ी वाह।

0: नीच कुना।
1: कबीर जी जात दे जुलाए सन, हजूर बाणी विच बख्शिश कर दियां के जदों नाम दी कमाई कीती तां गुणा दे खजाने बन गए।

भाई शबनंद लाल जी ने जितनी भी तारीफ जितनी भी उपमा कीती गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी अखी नजारे देखे। एक दिन का जिक्र है हजूर दीवान दे विच सुशोभित हन हरि कीर्तन विच संगतां गड़ुच होईयां गुरु चरणां विच जुड़ियां अमृत रस कीर्तन सरवण करके अपना जीवन सफल कर रहियां हन। एक प्रेमी आया मत्था टेकिया झट बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद फिर सतसंगत दियां दरीजां टप के अंदर आया फिर मुड़ गया। हजूर ने मेवड़े सिख नूं भेज के इस प्रेमी नूं बुलवाया। कीर्तन की समाप्ति तो उपरांत हजूर पुछन लगे भाई प्रेमिया तू सत संगत विच बैठना चाहुंदा सैं बैठ नहीं सी रहा इसका की कारण है? ता इस प्रेमी दे नैन कटोरे भर आए हाथ जोड़ के बेनती कीती ओ मेरा दे साईं ओ बख्शिशां दे दाते जिस दरबार विच ऐसे महापुरख गुरु के सिख अजप्पा जाप करन वाले श्वास श्वास सिमरन करन वाले फिर तेरे एक इशारे ते अपना सब कुछ वार देन वाले गुर सिख जुड़े बैठे होन उत्थे मेरे वर्गे पापी नूं भी थां है। मैं तां बड़ी नीच जाति दा हां। आख्या तू किस जाति दा है? गरीब निवाज सानू लोग कलाल कहिंदे हन। हजूर ने इस प्रेमी नूं अपने गल नाल ला के आख्या कि जो गुरु नानक दे दरबार विच आ जांदा है वो कलाल नहीं रहिंदा।

को मिले ना टोई शरण आवे ता निर्मल होई। पाई साहब ए नजारा की लिख रहे सन ते फिर आपने लिखिया कि कादरे हरकार गुरु गोविंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोविंद सिंह। ए है हर दी वड्याई हरी दी वड्याई हर की वड्याई देखो संतो हर निमाणिया

0: जिन हर पाया तिना छपाया, छिपे रहन की चाहत छिप टुर जान दी, पर यह पूरी हुंदी ना मैं ताले लै रहा। सात संगत खुशबू फुल दा पता दे दिंदी है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: खुशबू किस फुल किसे नूं नहीं कहिंदा है, ना फुल किसे नूं दसन जांदा है, ना फुल किसे नूं सददा है। फुल दी खुशबू ते सात संगत राही नूं सात संगत खुशबू तो उसका पता लगता है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हुण जी खुदाए दा भेद ना किसा दे, हुण मन दे विच बड़ी शर्मिंदगी आई भाई लैण दे कि मैं घोड़ी ते चढ़िया आया ते गुरु जी ने अपना आपा तक नहीं जनाया, ये तुरे आए, ये तो कितनी बेअदबी है। अंतरजमी सतगुरु जी कहिंदे हन भाई पुरशा, बेनती भी करते हैं महाराज मेथों किड्डी बेअदबी होई, मैथों किड्डी बेअदबी होई, तेरा ना की है जी लैणा। गुरु जी कहते कोई नहीं, लैण वाले घोड़ियां ते चढ़ के आया करते। रमज दत्ती लैण वाले वो राज नहीं देंदे, रमज देंदे ने। लैण वाले घोड़ियां ते चढ़ के आया करते ने, इस करके तू मन दे विच कोई चिंता ना कर, त्याग दे मन दे फुरने नूं। फिर सात संगत हुण दर्शन करके ऐसा मन जिमें मच्छी पानी दे विच लीन हो जाती है, गुरु दे दर्शनां दे विच ही लीन हो गए, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूजे पासे लभदे लभदे साथी आए, बई जाना है इत्थे ही बैठ गए। कहिंदे हां बस जिथे जाना सी चले गए, जिथे पहुंचना सी पहुंच गए, बोलो।

जिन्हें सारी दुनिया जित नाम का चक्कर फेरिया है। नानक निरंकारी करके सतगुरु उस समय प्रसिद्ध सन। गुरु नानक निरंकारी कहते फिर तू की करना, मैं तो तेन पूछण आया सेठ। मेरा मालिक कहता है

0: जो सुख चाहे सदा शान राम की
1: लेह
0: सो सा संगत। इस करके हूं परथ ते कृपा हुई हूं महाराज उस परथरी रू शाहूकार नू किमें सुखी हो दुनिया किमें सुखी की गुरु नानक ने बोलो सपना
1: श्री वाहिगुरु।
0: परथरी कहना 500 साल दी मेरी उम्र है इतने जप तप इतने जो कमाले मेरा मन अजे भी शांत नहीं होया है। शाहूकार कहने इतना कुछ हो के भी मेरा मन शांत नहीं होया है। सतगुरु ने कृपा की थी